बिल तो दक्कन फसे होते मियोती फाही पे ऐप बिल तक अंगारा जुमला अदु फाही पे ऐप ट्रांसफर कोल्ला देंगा महुरिया बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी फोन फेंग गैस अदि मीडिया नेट बिलकस देख के ने रीलोड रास्टस नूनी डेटा पेक्वस नेगे नेंगे मी हम डिजिटल वॉलेट देने मस देबैवैरु बिल नु देखिगे लारिय वीणुए नेंगिगे उलेक नुजे ने हुरिया डिजिटल पेमेंट तक फाही पे मा फाही

0: best.
1: Tea time request me show ke maulumat kol me adu hasa kol la fami wani FIFA ya then mi har kuria da FIFA World Cup no ta duniega ami kule eme bodu e mubarak kam ga football mubarak ami rawa intizam kurani FIFA FIFA no ta federation international di football association ki duniege football futsal adi beach soka balahata eme mati idara mi jamia u fedduni नवाजते का हथरेग फ्रांस के पेरिहुग मिहार के मैमरकज हुननी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक का अदें अमी फीफा हिंगुम के ओनिगंड बला लायरुग मी थिंग बायका बेहिगे मिदानी ए फीफा कांग्रेस मी फीफा के मेमती कानून हदा मजदिस मी कहुरी हा मेंबर कौम तक के मंदू बुम बैवरवाने तें फीफा काउंसिल मी कांग्रेस ने वगुतव ग मुहिमुनि मुंतनिम्मा मी बोर्ड देन वेरिंग फीफा के मिहार के राइस की जियानी इन्फेंटिनो देन फीफा के मेंबर कौम तक के तेरेगा 211 गाउमे फुटबॉल एसोसिएशन का हिमेने मेगे तेरेगा दिवेहि राचेवेस हिमेने देन दुनियागे की सरहद तौगे फुटबॉल बेले हेटुमटका हा सरहद इदारायका मी बहाले फमी वनी एगो तुन यूरोप सरहद एशिया सरहद मी दिवेहि राचेवेस हिमेने सरहद अफ्रीका सरहद देकुन अमेरिका मेगे इतुरुं उतुर अमेरिका मेदतेरे अमेरिका आदि कैरिबियन गे इतुरुं ओशिनिया सरहद मी हातर हा सरहद मी हिमेनेनी देन मी फीफा के मैकन मसूल देतो तेरेगा मी हिमेनेनी बडति मुबारक तबेवुमा फुटबॉल कुरेरवुमा मसके कुरुम गेतुरुं गवातन हेदुमा आदि कुलुं तेरिन बदलवुम बेलेहेट्टुम फदा कांकां मी फीफागे मैगन मसूल देतोगे तेरेगा मी हिमेनेनी मी हार गडी मेवनी फर्स्ट गडी दे मिनिट हिंग ऑफ नो दे के मेगाहर्ट्ज दिवे एफएम उन कुरिया मिदा टी टाइम रिक्वेस्ट मी शोगा मी हा हिसाब उ मी जहाल देनी गडी रुगे फेशुं कम गवा अमिल राकु के लवा अमिल राकु के लवे कां अमी हिमनाल देनी काराकु मी लवा मी मातु किया फवा लवे
2: दिवे एफएम के कुम मे गडी रेगे फेशुं मिस दिवे अमिल राकु के लवे कुम

0: दिव्य ही एफएम गेनस्तनी
1: वायरल वाइब्स
2: एक गोयको तो मकबूल वाला वतका एक चार्ट तोगे एमए टॉप लवतका अद मिनोनस एक प्लेटफार्म तोगे एमए वायरल लवता
1: वायरल वाइब्स
3: कोमे हफ्ता आगे वेस आदित्य दोहोगे मेंदुर फाव देज जहायर रिपीट होम दोहोगे रेगंड एगार जहायर आदि अंगार दोहोगे मेंदमो बाहर जहायर
0: वायरल वाइब हमारे कड़ी मोदी है कि मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम
4: मीहुं बुने लोई पकी इतंग हास वाह के बुने दे हुसास के एनम विस मी के में उफावेरिकंगे नुवनी ए वाहकता कायको हिग्गेम रागे कुलला मिहुनीमा

0: नुआ दिया है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम मगरिब नमाद वगत
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: No, Your Honor. ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है, Your Honor. इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती. ना का मतलब नहीं होता है. My client said no, Your Honor. And these boys must realize, no का मतलब no होता. उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या आपकी अपनी बीवी ही क्यों ना, no means no.
1: मी कौन फिल्म में कहीं मैंने डायलॉग है? मी सवाल का जवाब फरनवाने पीएसएम में आमे दोर को बालाना साड़ी शोया. जवाब फरनों में सुंगड़िया की अंगार दोहग में दम पार गड़ सुमिनट. कौन में हफ्ता एक वस्कुरी एक गिंदा बालालन साली मिशोग गेनेस ते केस्तर डायलोग गे एम में गीन सुवालतोग जवाब रंगल कुरा बैवरे का महा को इफार नगा गुरोतुं खास हादिया एली बेने. एम में गीन सुवालोग जवाब रंगल कुरा बैवरे नगानी कौन में महे गिवस एम में फाहुशोग.
2: केस्तर डायलोग मीवाल दिनी गेस्त डायलोग अदे जवाब ता पीएसएम एआ मेदर को बलालन सली शोए फोनो मंदानी मिहा हिसाब अंदे अलगुन दिवे हि अमिल्ला राव गे लवे शो गे इवाल देना लवे फो शो गे कुरियन हुरी बात काय के पत्तल कोलाना.

0: No, Your Honor. ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है, Your Honor. इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती. ना का मतलब ना ही होता है. My client said no, Your Honor. And these boys must realize, no का मतलब no होता. उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या आपकी अपनी बीवी ही क्यों ना, no means no.
1: मी कौन फिल्म में कही मैंने डायलॉग है? मिसुवाल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोरे को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दो होगे मेंदम पार गड़ सु मिनट कौम में हफ्ता एक वस्कूरी एक गेंदा बालालन साड़ी मिशो के गेनेस ते केस्त डायलोग के एम में गिने सुवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवरे का महा को इफारो नगा गुरातुं खास हादिया एली बेने एम में गिने सुवाल के जवाब रंगल कुरा बैवरे नगानी कौम में महे गिवस एम में फाहुशोगा
2: केस्त डायलोग
3: ಬಾಲಾಲನ್ ಸಳಿ ಶೋನಿ ಮಾಲಾಫ್ ವಕಿವೆಲಾಣ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ.

0: आरजे नुवादिहा एके मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएमओ
1: गेस्ट आरजे बुरास्वेद्धोगे रेगण आकेट फणरेग स्टूडियो इन वगुतु
2: मीलम